0: ଜଗତର ପାଞ୍ଚଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ହେଉଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ହରିକଥା, ଦୟା, ଦୀନତା ଏବଂ ପରୋପକାର। ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୀ ପ୍ରାତ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर के डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ, अब कुछ नहीं कहूँगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

0: गत्वा क्रियमाणं सत्यापनकार्यं यत् अस्य मासस्य नवविंशतिदिनाङ्कपर्यन्तं निर्धारितमासीत् अधुना आगामिमासस्य अष्टमदिनाङ्कपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। पञ्जाबतेलङ्गाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापनकार्यम् आगामिमासस्य तृतीयदिनाङ्कपर्यन्तम् एव अनुवर्तिष्यते। विश्वविख्याता पुरीरथयात्रा अद्य ओडिशाराज्यस्य पुरीनगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठभ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्यां वार्षिकरथयात्रायां जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपान्त्यचक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिकादेशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये त्रिदिवसीय एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
1: सुनिले संस्कृतिरे संवाद आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी पुरी एथर सुनंतु आजर कार्यक्रमर सूचना। श्रोता बंधु आपण मैंने शुणुंटे आकाशवाणी पूरी केन्द्र कार्यक्रम प्रचारित होती 37.4 फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन जोगे स्टूडियो घर समय वर्तमान सका 7:00 शुणु आज कार्यक्रम सूचना। आज सका 7:05 शुणिपारे आंचलिक संवाद आकाशवाणी कटक केन्द्र पर शुणे आमरी स्वास्थ्य कार्यक्रम सका 7:10 ओडिया संवाद शुणिपारे सका 7:15 सकाळ 7:30 प्रचार करिबु श्रीजगन्नाथ महाप्रभुंक विश्व प्रसिद्ध रथयात्रार प्रत्यक्षदर्शी धारा बरणी आकाशवाणी कटक केन्द्ररु हिंदी संवाद शुणिपारे आकाशवाणी दिल्लीरु सकाळ 8:00 आज संध्या 7:30 रही चासी भाई भौणीमानक पाई कार्यक्रम किसान पाणी एथिरे आज आलोचना रही वर्षा जल संरक्षण एवं खरीफ धान चाषपाई वैज्ञानिक पद्धति तलीघरा प्रस्तुति संपर्क आलोचना करेंगे डॉक्टर अशोक कुमार महापात्र। राति 8:00 रही कार्यक्रम क्षेत्र महिमा उपस्थापना करेंगे प्रकाश कुमार रथ प्रयोजना दिलीप कुमार नायक। आज राति 10:00 शुणिपारे गीतिनाट्य श्री गुंडीचा रचना प्रयोजना शारदा प्रसन्न नायक संगीत भुवनेश्वरी मिश्र ए गीतिनाट्य शुणिपारे आकाशवाणी कटक केन्द्र राति 10:00 इट शेष होगा कार्यक्रम सूचना। आकाशवाणी पूरी परवर्ती कार्यक्रम शुणिपारे आकाशवाणी कटक केन्द्र।

जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्व पाप हर मुख्य दायक ए पुण्यमय श्रीक्षेत्र अनुष्ठित होता ए पतित पावन रथयात्रार धारा बरणी शुणापी आम राज्यर पुरपल्ली तथा विश्वर कोण अनुकोण से आग्रह सहित अपेक्षा करगणित प्रिय श्रोता बंधु मान पुणि थे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बर्षकर बहु प्रतीक्षित मुहूर्त एवं उपगत हो सबुआड़े उत्कंठा उन्मादना एवं उत्साह भूमि भूमा पर्यंत समस्ते चलचंचल एक अपूर्व उत्सुकता और भक्तिक आवेगर समस्त दृष्टि निबद्ध नीलकंदर उपरे भक्त दर्शन करिवे महाप्रभु को, महाप्रभु दर्शन करिवे भक्त को। आबाल वृद्ध वनिता आज जे भी महाप्रभु दिव्यलीला दर्शन करने बड़ दंड उपस्थित होती समस्त असामान्य श्रद्धापूर्ण भक्ति भाव विभोर चलार रहीबार ठेला पेला सहबार पाद छिंडी जीवार वर्षा तिंतार समस्त कष्ट आज तुच्छ हो जा जीवन रे परम प्राप्तिर बेल जत आगत से कौ कष्ट अटकेब भक्त को श्रीक्षेत्र तो स्वाभाविक भाव प्रबल भक्तिमय परिवेश थाए ता सांग को सचराचर विश्व आज भक्तिमय समस्ते जपरी महाप्रभु को धारण करने निज हृदय सिंहासन को सजाइबार लगी महाप्रभु पाखे आम प्रार्थना से विराजतु प्रत्येक हृदय सिंहासन आउ अल्प समय व्यवधान प्रतीक्षार फल मीठा श्रोता बंधु आम समस्ते से स्वाद पाइबा जानते श्रोता बंधु विगत 452 वर्षर इतिहास रे विभिन्न कारण 32 थर महाप्रभु रथयात्रा हो पारिना किंतु 1736 मसीहा परठारु ए पर्यंत ए यात्रा निरवच्छिन्न भावरे चली ओडियांक भाग्य केते टाण एवं महाप्रभुंकर केते करुणा देखंतु विश्विक महामारी करोनार कोकुआ भय कालरे भी महाप्रभु रथयात्रा करेले। हाँ श्रोता बंधु आपन को आउ गोटे सूचना देवाक चाहिबी ताहा हला आकाशवाणी 90 वर्षरे पदार्पण करी आम देशरे उत्सव मनाउछ ए 90 वर्ष

0: କାରଣ ସିଏ ପରା ଏ ମର୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, କଥା କୁହା ଠାକୁର, ସେ ପରା କଥା କହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭାବ ଡୋରିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେହି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଠାକୁର କଳିଯୁଗରେ କେତେ ମହାନ।
1: ଶୁଣୁଥିଲି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଘୋଷ ଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଧାରାବିବରଣୀର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ପରେ ପରେ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
5: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP OSAT इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
4: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
6: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित

0: 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
5: रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान

0: लिए तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में चार दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
1: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमीकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा।

0: सत्यम सत्यमेव ब्रवीमिते प्रसाद भंगे तत्स्थानम न त्यक्ष्यामि कदाचन। तेणु हे राजा इंद्रदुम्न मु श्रीवत्स खंडशाल केबे छाड़ी ना जदि छाड़ी ना आज महाप्रभु आपण किपर आसुंट तेणु यही आसुंच आसी माधव को हे माधव तुम्हें मोर प्रतीक भाव तुम्हें मोर प्रतिनिधि भाव ये श्रीवत्स खंडशाल रहिबो मु पूरा सत्य करिछि मु जदि सत्य को पालन न करिबी ये जगत रे सत्यर गुणग्राही केही हेबे नाही। तेणु महाप्रभु माधव को रखी से वर्तमान आसी जाउछंती बाहर को देख
1: ये मुतिटी भलो लागुछि पत्नी को पसंद आसीबो।
2: हां सर आपण को चॉइस बहुत भलो अछि आ ये डिजाइन भी नुवा
1: डिजाइन नुवा अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धतार प्रमाण कौठि मिलिबो
2: सचेतन ग्राहक हुवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किणिबा पूर्वरु बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु।
3: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसा रे विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि। एथि सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे
4: ओडिशा प्रगति पथर जोड़ी हेउछि विकासर नुआ अध्याय दूरता कमाई गाँ को गाँ सह जोड़ुछि सेतु बंधन छात्र छात्री को पई प्रतिबंधक साजुनी बढ़िला नई जातायत हेउछि सुगम सुगम ग्राम्य सड़क एबे दुआरे पहुंचुछि आंबुलांस गाँ को बजार सह जोड़ुछि प्रशस्त सड़क चासीर फसल ठारु कुंभारर माटी हांडी सबु पई खोलुछि नुआ सुजोग पर्यटन स्थली को सुगम करुछि सड़क संजोग बढ़ुछि पर्यटकंक आगमन गाँ गाँ रे लंबिछि उन्नत सड़क दृढ़ हेउछि विकासर भित्तिभूमि समृद्ध हेउछि ग्रामीण ओडिशा सड़क सेतु ओ भित्तिभूमि विकास माध्यमरे पूरण हेउछि यशस्वी प्रधानमंत्रीक पूर्वोदय संकल्प माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीक मार्गदर्शन रे ओडिशार विकास पई प्रतिबद्ध ग्राम्य उन्नयन विभाग।
5: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु पुणि प्रथम केन्द्र रु आमे आपणको धारा बिवरणी देबा आरंभ करुचु। वर्तमान तीनी रथरे ए जो कलस भज बंधा कार्य चलीछि कोठो सुआसिया सेवक माने आम आखि आगे तीनी रथ उपरे चढ़ी वर्तमान कलस स्थापना करुछंती एवं कलस स्थापना सहित तीनी रो रथ उपरे से कलस उपरे महाप्रभुंकर प्रदत्त आज्ञामाळ को मध्य सेमाने बांधुचंती। आमे बसिकरी एठे कथाबार्ता होचु एवं देखिला बेळकु आमर आखि लिभि जाउची जे किभळी भाबरे कोठस्वासिया सेवक माने कोउ बाटरे रथ तो मंडणी हे जाइचंती एवं रथ उपरे तो सबु रथ उपरे तो कना छाउणी हे जाइची कोउ बाटे माने उपरकु गले प्रकृत रे ए जो रथ निर्माण रो कौशल आपण देखिबे रथ कळारु जो रथ निर्माण आरंभ हुए ये बड़ विचित्र आमर प्राचीन शास्त्र माने एते समृद्ध एवं एते निखुण जे रथ को निर्माण करते जो कारीगर माने जो शिल्पीकूल ओडिशार से शिल्पीकूल को धन्य कह से माने से शास्त्र से परंपरा को ए पर्यंत मने रखी ताको पुंखानुपुंख भाव में अध्ययन करी ए पर्यंत ताको प्रयोग करी जो रथ निर्माण करुचंती निखुण भाव में रथ निर्माण होची एवं रथ भीतर बाटे ऊपर कना मंडणी होता ताऊपर तो कोटसिया से माने चढ़ी पारे से माने रथ भीतरे भीतरे गोटे बाट तैयारी से कलश पाखक जावाई रथर सर्वोच्च शिखर में पहुँची ये जो तीन कलश से बांधुं वर्तमान तापाई रथ से बाट कराई सुंदर भाव में आमर आखि लिभि जाऊँगी आम देखला बेलू आमको डर मारूँ केमी बांधुं केमी एत उपरको चढ़ुं कि आप गोटे कथा भी जाणी था चुनरा सेवक मैंने जो मैंने नीलचक्र नेत बांधती पतित पावन बाना को बांधती से मैंने विशाल उत्तुंग श्रीमंदिर शिखर को केमी चढ़ी जाती अनायास आश्चर्य लगे आमको कारण या पछरे आप देखिए जे महाप्रभुंकर सेवा सहित जिते सब सेवक अच्छा से सेवक मान सेवा गुड़ाक गोटे विशेष सेवा तापाई तालीम नहले एमती जे कही से महाप्रभु को पूरा से सेवक मानक लोड़ा पड़े कारण से ही सेवक मान जगार आम जदि अगर लोक लगे से कमटा करदेपारू तेल से सेवक मैंने लोड़ा पड़ते ना कारण से सेवक मैंने आप जानते अनसर समय

0: ये मुदिटी भलो लागुची पत्नी को पसंद आसीबो
1: हां सर आपनको चॉइस बहुत भलो अछि आ ओ डिजाइन भी नुवा
0: डिजाइन नुवा छ ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धता रा प्रमाण कोठी मिलिबो
1: सचेतन ग्राहक हुअंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किनिबा पूर्वरो बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु
2: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्था आरई जथा बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पेमेंट सिस्टम अंशग्रहणकारी पार्टिसिपेंट्स क्रेडिट इनफॉरमेशन कंपनी विरुद्ध रे आपणंकर अभियोगर समाधान पई प्रथमे संपृक्त नियंत्रित संस्था निकट रे आपणंकर अभियोग दाखल करंतु एवं रेफरेंस नंबर प्राप्त करंतु
3: जदि 30 दिन मध्य रे संपृक्त नियंत्रित संस्था कोनोसे समाधान न करंती किंबा आपण प्रदत्त समाधान रे संतुष्ट नहंती तेबे आपण https://cms.rbi.org.in रे लॉगिन करी रिजर्व बैंक ओम्ब्युड्समन को निकटरे किंबा crpc@rbi.org.in रे ईमेल करी अथवा सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा सेक्टर 17 चंडीगढ़ 160017 ठिकणा रे डाक द्वारा पठाई अभियोग दाखल करी परिबे
2: मने रखंतु सीधा सडक भारतीय रिजर्व बैंक रो ओम्ब्युड्समन को निकटरे दाखल होइतिबा अभियोग प्रत्यक्षन हेबार संभावना अछि
3: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहितरे जारी
4: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्रीमानक सुविधा पई ओडिसा रे विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानकरे यात्रीमानक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनक सेवारे
5: पवित्र रथयात्रा उपलक्ष्य सुभद्रा शक्ति बाजार आपनक जणाउछि असुमारी शुभेच्छा एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बाजार रे एसएचजी मा मानक हात तयारी हस्ततंत्र हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्री प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो अपूर्व संभार पवित्र घोष यात्रा उपलक्ष्य सुभद्रा शक्ति बाजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती आसंतु आपनको अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बाजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर
6: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्रीनी श्रृंग विहरन मातंगी भंगी भृत दुदेवी ततप्ता प्रतप्त मनसाम कादम्यनी कंदल पादम भरुहरुक्त भक्त जनतां कारुण्य पाको निधि यः स्वयं जगदीशरं वितानुतां श्रेयांसि ब्रूयांसि वः एहि आम बड़ दंड बड़ ठाकुरंकर विजयस्थली बलियार भुजंकर सेई बड़ दंडर से सिंह द्वार गुमुट भितर आमे देखी पारुचु सेई आसुछंती पहंडी होई हली हली झुली झुली बाईसी पाच दई घंटु आंकर घंट घंटर से नादर ताले ताले हरि बोल कुलहुली रे गगन पवन प्रकंपित होई उठुछंती आदि द्वादश यात्रार श्रेष्ठ यात्रा रथ यात्रा अनुष्ठित होउछंती जहांगों की बारह मासरे तेरह यात्रा लगाई अछंती जगतर नाथ पतित जनक उद्धार निमंते नाना उत्सव लीलासी लीला भितर श्रीनीलगिरी शिखरे हरि द्वादश यात्रा विनोदे स्नान गुंडीचा अयन शयन पारस पालट मोदे देव उत्थापन मकर ओढ़ण दोल दमनक चरी चंदन चंपक उत्सव सहित ए विधि लीला विस्तारी ए विधि लीला को अनुष्ठित करी बलियार भुज आज आसुछंती घंटुआ मानंकर उद्घोषण रे अपेक्षा करिछंती अरुण स्तंभ निकटरे अनेक श्रद्धालु नृत्यांगना माने अपेक्षा करिछंती मठर मठाधीश माने आलोड चालुछि चामर चालुछि हुळहुळी रे समस्त भक्त मानंकर स्वर एक स्वर रे उच्च स्वर रे उच्चारित हेउछंती हरि बोल हुळहुळी सहित आउ आमे देखि पारुछु वर्षा टिकिए टिकिए हेरे मध्य भूर्खेप नाही वर्षा को कहेंगे ना भगवान को सहित भक्तर मिलनर यात्रा एक वर्ष परे प्रभु आसी सिंह द्वार से गुमुट दे रथारूढ़ हेबे एवं चली जिबे से कर्म भूमि जन्म वेदी को जोठी माँ अपेक्षा करिछंती रानी गुंडीचा कथा देइथिले मु आसीबी निश्चय आसीबी बर देइथिले मातांकु से सेइथि पै जननी जन्म भविष्य स्वर्ग दपि गरि असी प्रभु आपणार करिनेबे बंधु मानंकु आउ आज क्रम नयरे आसीछंती आमे देखुचु नीला जो निया हुळा बनाटी मध्य ताहा मध्य चालीजी प्रस्तुत होछन जने सेवक तार जो हुळा बनाटी माध्यम रे निया को संयोग करी प्रभु को निकट रे पूरी

0: मानिबा तथा शिशु महिला और वयोज्येष्ठ सुरक्षा प्रति सचेतन रही विश्व प्रसिद्ध यात्रा को शांतिपूर्ण और सफल करिबा।
1: जय जगन्नाथ। रथयात्रा अवसर में आपमानंकु हार्दिक शुभेच्छा। लक्ष लक्ष भक्तंकर सुस्थ एवं सुरक्षित दर्शन पाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व्यापक प्रस्तुति करिछन्ति। पुरी बड़दाण्ड एवं प्रमुख स्थान में 8 अत्याधुनिक 10 विशिष्ट चिकित्सा शिविर यथा पुराणा रघुनंदन पाठागार निकट में नीलाद्री भक्त निवास जगन्नाथ वल्लभ पार्किंग परिसर में बगला परिसर में मार्केट छक म्युनिसिपालिटी मार्केट कॉम्प्लेक्स सामने भोलानाथ विद्यापीठ ठारे बस स्टैंड रेल स्टेशन मुख्य फाटक सम्मुखें व्यवस्था कर सहित 30 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र प्रत्येक शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर नर्स पारामेडिकल कर्मचारी ऑक्सीजन ईसीजी जरूरीकालीन औषध और 24 सेवा उपलब्ध। गुरुतर रोगी मुख्य चिकित्सालय 300 अधिक संरक्षित शज्ञा आईसीयू बर्न वार्ड ऑपरेशन थिएटर रो व्यवस्था रही। भक्त मान तुरंत सेवा पाई 82 आंबुलांस स्वतंत्र करिडोर और प्रशिक्षित दल प्रस्तुत अछंती। आपण को सुस्थता आमर सर्वोच्च प्राथमिकता।
2: आकाश रे कोला मेघ पूरी घोटी आसुची आउ तले सेई कोला ठाकुर षोडश कला परिपूर्ण जगन्नाथ महाप्रभु वर्तमान पहंडी रे पहुंड पहुंड डेई डेई भक्त विनोद अर्थरे आसुछंती नंदीघोष आड़क जानिछंती आपण माने श्रोता बंधु सिंह द्वार देई आसुछंती महाप्रभु से जो दृश्य से होची पूर्व द्वार एवं सिंह एभली एक प्रतीक जहाकु नाभि सेकोन संस्कार सिंहस्य क्रियते बने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। सिंह केतेबेले कहा माध्यम रे सिंहत्व प्रकाश करे नाही निजे निजर बल को पराक्रम को निजर आयत्तरे निजर कर्म द्वारा से प्रतिपादित करंती से आह्वान देउचंती सिंह द्वारा आमको शिखेई देउचंती हे मनीष माने निज कर्म द्वारा बड़ हुओ अन्य को ईर्षा कर बड़ होगापी चेष्टा कर ना स्वयमेव मृगेन्द्रता से पवित्र सिंह द्वार दे धर्म द्वार दे अरुण स्तंभ चकड़ा आड़ को मारी आसुंची मो कला ठाकुर कला बामन आउ बड़ कथा हूँ रथे तु बामनम दृष्टुआ पुनर्जन्म न विद्यते से रथ उपर जो कला बामन आसी उपवेशन करे धन्य हो जगत से तो से माधव को श्रीमंदिर से अणसर पिंडी निकटने बसाई साखी रूप से रखी सी पल आसी बाहर को आउ भाई भौणी चक्रराज सुदर्शन पहंडी पर सर्वशेष महाप्रभु लीलामय नीलाद्रीश आसुंती ढली ढली धन्य से रघु अरक्षित धन्य से राघव दास मठ जो परंपरा आदि सुंदर भाव उज्जीवित से जोदिन पुरस्रण करुले सिंहद्वार प्रचंड रौद्र प्रखर ताप एवं मध्यान समय रे महाप्रभु सही पारे भक्तर कष्ट तालपत्र छताटे आनी मुंड देखाई एवं किए छोट बाड़क जिते बड़े ध्यान भग्न है रघु अरक्षित सी चाहते जापारे ना रात्र जिते शयन कर स्वप्न रे महाप्रभु हसी हसी कहते मु पूरा तुम पाखे रही आउ से ऋण को सुझापी से ताहिया मंडणी करुंती जगत जे पर्यंत थिबो महाप्रभुंकर लीला जे पर्यंत रही थिबो शाश्वत लीला रे से रघु अरक्षितंकर राघव दास मठ प्रदत्त से जो जरी जंबुरा कदम्ब पुष्प सदृश सोलरे तयारी होइतिबा कदम्ब कढ़ी से जो काठी गुड़िक एवं जगन्नाथ महाप्रभुंकर 37 गोटी काठी से 37 गोटी काठी रे 37 टी कदम्ब पुष्प रंगणी जरी जंबुरा चंपा मालती मल्ली आउ सबुठार ऊपर रही अच्छी दुर्वांकुर। हे श्रोता बंधु से दुर्वांकुर 108 दुबर जो समाहार सी सुंदर भाव में ढली ढली आम को अवगत कराऊ जहाँ आम पूर्वर शुणुले तरोरीब सहिष्णुना तृणादपी सुनिचेन से कथा को से सूचाई देउची मुसिना पाद तलर दुब थी आज शुद्ध स्वर मते संग्रह करी आनी दयनामी माली मते आनी ए जो

0: ठाकुर तुम्हें हो जो कोटि कैबल्य नाथ गतिर गति आरतीर साथी पतित पावन प्रभु कमनीय नमनीय तार प्रतीक अभय अनंत निराकार निरंजन तुम्हें हौच से समस्त आर्त बंधु आर्तनाम सकल आर्तिनाशनम श्री जगन्नाथ मिड़े लीलामय पुरुषंकर लीला अटकी जाइछंती अणसर घरे थिले आज बाहर होइछंती अणसर घरे थिलो आज बाहर होइलो टिके अणसर घरे थिलो किंतु आज कौन करिछ टिके आसुच एवं जाउछ पाद हुंडन करी दैतापति माने आपण को नै आसिसंती किंतु तथापि काहीं कि प्रभु आस आउ विलंब कर नहीं प्रभु चली आस भक्त माने अपेक्षा करिसंती तुम्हें हेउच जगतर ठाकुर जहांकर मुखर ब्राह्मण बाहुर क्षत्रिय उरुर वैश्य पादर सूत्र चक्षुर दिवाकर चंद्र कर्ण द्वयर प्राणादि पंच वायु जिहारु अग्नि नाभिरु आकाश मस्तकर स्वर्ग सृष्टि तुम्हें हौच से यज्ञ पुरुष जो यज्ञ पुरुषंकु देखिथिले स्कंद पुराण अनुसार सहस्र अश्वमेध यज्ञ समापन समय रे जेतेबेले यज्ञर पूर्वरु से यज्ञ पुरुषंकु स्वप्नरे देखिथिले एवं तापरे जेतेबेले अवभूत स्नान करिबा पई जाइछंती सागर तीरे आपण दारु ब्रह्म स्वरूप रे आसीथिले जो दारु रूपे आसीबा परे आपणकु स्नान करा जाइथिला से स्नान थिला स्नान पूर्णिमा आविर्भावर दिवस आज से अणसर घरे रही आपणकर दार व्यतनु सुंदर भाव रे चर्चा हो सारा पर आज आसी अणसर घर बाहर हो भक्त मानकू तुम्हें यज्ञ यज्ञास तुम यज्ञेश परात्पर शब्द ब्रह्म परम तुम ही शब्द ब्रह्मासी विश्वरा स्वरार सम्राट जगन्नाथ बीरा रसी जगतपते अधश्च उद्धर्च तिर्जक त्वं तोया व्याप्तम जगन्मय आपण सारा जगत को परा व्याप्त करी रखिछंती आपण होचंती विश्वर ठाकुर आपण होचंती कोटि कैबल्य नाथ जगतर नाथ जहांकर जो जगत भितरे सारा संसार को आपण नै जाइछंती कोळे दैछंती महिमा मंडित आपणकर त्रिभुवन विदित होची आपणकर नाम आपण जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ पाहिमाम जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ रक्षमाम से जगन्नाथ को रक्षा कर बोली मणिमा मणिमा डाकरे खुरी पड़ुची आज बड़दाण्ड रे आपण चली आसिछंती किंतु आमे तो जानिथिलु प्रभु आपणकर परे कोन पाद नाही आपणकर परे कान नाही आपणकर परे हात नाही किए कहे सारा संसार कहुतला किंतु आपण तो आज विस्तारित करिछंती आपणकर शरीर को आपणकर बापू को अपाणी पाद जवन ग्रहिता पश्यत चक्षु ससृणत्य कर्णः सवेति वेद्यम नचे तस्याति वेता तमाहुराज्ञम पुरुषम महांतम हस्तपाद हो आपण जो कहते ना बोली आज कितु आपण समार विश्व को आप देख दौंट मोर पाद अच्छी देख मु चली चली आसुची बाउन भंडार मालिक मु षाठी पौठी भोग नीति मो पाखे अर्पण करा जाए मुते दौले से खाऊ नसुखी मोर हाथ मुते दौते खाऊ क्षेत्र हूँ ऐश्वर्यर क्षेत्र ए क्षेत्र हूँ भोगर क्षेत्र
1: ये मुदिटी भलो लागुची पत्नी को पसंद आसीबो
2: हां सर आपनों को चॉइस बहुत भलो अछि आ ओ डिजाइन भी नुवा
1: डिजाइन नुवा अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धता रा प्रमाण केउठी मिलिबो
2: सचेतन ग्राहक होवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किनिबा पूर्वरो बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु
3: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्था आरी जथा बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पेमेंट सिस्टम अंशग्रहणकारी पार्टिसिपेंट्स क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनी विरुद्ध आपणकर अभियोग समाधान पई प्रथमे संपृक्त नियंत्रित संस्था निकट रे आपणकर अभियोग दाखल करंतु एवं रेफरेंस नंबर प्राप्त करंतु
4: जदि 30 दिन मध्यरे संपृक्त नियंत्रित संस्था कोनोसे समाधान न करंती किंबा आपण प्रदत्त समाधान रे संतुष्ट नहंती तेबे आपण https://cms.rbi.org.in रे लॉगिन करी रिजर्व बैंक ओम्बुड्समन को निकटरे किंबा crpc@rbi.org.in रे ईमेल करी अथवा सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा सेक्टर 17 चंडीगढ़ 160

0: 0017 ठिकणारे डाक द्वारा पठाई अभियोग दाखल करि परिबे
1: माने रखंतु सीधा सडक भारतीय रिजर्व बैंक रो ओम्बुड्समैन को निकट रे दाखल होइतिबा अभियोग प्रत्यक्षन हेबार संभावना अछि
0: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित रे जारी
2: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे
3: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे श्रीक्षेत्ररे घोषयात्रा अवसररे जो मुहूर्त पाई जो क्षण पाई विश्ववासींकर अपेक्षा थाए से मुहूर्त एवं उपगत आपण माने आमर जो माइक्रोफोन दिहाई बड़दाण्ड आड़ से माइक्रोफोन मध्यम घंट घंटार नाद मध्य आपण सुनुथिबे महाप्रभु आज टिके विलंब कले पखापाखि अध घंटा हबो बड़ ठाकुर बलभद्र एवं माँ सुभद्रा निज निज रथरे विराजमान कर सारे किंतु महाप्रभु गहली करुचंती किंतु आसुनाहंती गुमुट भितरे आमे अनेक समय हला महाप्रभु को देखुचु तेणु तो बुझा सहज नुहे कहीं सी आसुना तार कारण से ही जानती तेज आम समस्त अपेक्षा जे महाप्रभु केत आसवे एवं तार सूचना आम पाच ए घंट घंटार ध्वनि भितर आपड़ जानती किसी समय पूर्वर कहते आमर डॉक्टर कल्याणी नंदी महोदया महाप्रभुंर औदार्य लीला आधुर्य लीला विषय तीनोटी लीला महाप्रभुंर अच्छी गोटे है ऐश्वर्य लीला जो श्रीमंदिर भितर महाप्रभु जो सेवा पूजा नीति कांति दर्शन ये व्यवस्था भितर अच्छा से हूँ ऐश्वर्य लीला एभली गोटे श्रीवत्स खंडशाल मंदिर ये सुंदर मंदिर पंचरथ शैली जहाँ निर्मित होती सिंहद्वार ठार आरंभ कर गर्भगृह और पार्श्व देवादेवी पर्यंत यही पंचरथ मंदिर योटी अच्छी कौ देवतांर एत सुंदर एत सुच्च मंदिर एते विराट आयतन एवं ता सहित यही षाठी पौटी अन्न व्यंजनर व्यवस्था ता भितर सुखिला भोग अच्छी शंखुड़ी भोग अच्छी अन्न महाप्रसाद अच्छी जावतीय प्रकार दुर्लभ जहाँ आम ना शुणीचु के देखी ना यही पदार्थ मैंने महाप्रभुंर भोग लगती महाप्रभु को दर्शन करने को कहीं के दूर भक्त मैंने धनी ठू आरंभ कर निर्धन पर्यंत केते समस्त आसिकी गरुड़ स्तंभ पचर रही महाप्रभुंर निज दुख दैन्य नवेदन करके जाऊँगी सब हूँ महाप्रभुंर ऐश्वर्य लीला किंतु महाप्रभुंर आ गोटे बड़ लीला हूँ औदार्य लीला औदार्य शब्दी कौथर आसी औदार्य शब्दी आसी उदारतारू बा औदार्य शब्द रू आसी उदारता महानुभवता उदारतार जोबले महाप्रभुंर दृष्टि विशाल हो जाए महाप्रभुंर नेत्र दृष्टि समग्र विश्व आड़ प्रसारित हो जाए महाप्रभु जिते उदार भाव में भावित हो जाती समग्र विश्व जनता आखि आगे देखा जाती से आम अनिमेष कही से आम चका आखि कही से गोटे आखिरे चंद्र एवं गोटे आखिरे सूर्य को आम देचु कहीं तार कारण है सूर्य चंद्रंर दृष्टि न पड़ुवा स्थान जमी पृथ्वी में ना महाप्रभुंर आखिर आढ़ुआल कौन सी जिनस रही पारना एवं पृथ्वीर एभली सूच्याग्र मध्य स्थान ना जोटि महाप्रभुंर दृष्टि पड़े ना तेणु से आम सूर्य चंद्र चक्षु विशिष्ट करु तेणु से ही महाप्रभुंर से ही दृष्टि जोबले उदार भाव में परिपूर्ण हो जाए से महाप्रभु से उदार भाव को विस्तारित करने बड़दाण्ड को आसत तेणु ये हूँ उदार लीला जो रथजात्रा कथा आम आलोचना करुच्छ बारंबार से स्वयं लीला कहतु पतित पावन जात्रा कहतु घोष जात्रा कहतु जहाँ भी कहतु जिते ना नामित करूँ से सबू जात्रार से सबू नाँ मूल गोटे अच्छी महाप्रभुंर उदार भाव भल पाइबार भाव से भल पाइबा केवल आमर तक प्रति नुह आम ठू जथेष अधिक आम प्रति तेणु ये भावटा केत महाप्रभुंर ये भाव तो सबुबले अच्छी रत्न सिंहासन बसी

0: तुरंत पुरी जिला चिकित्सालय कंट्रोल रूम को फोन करंतु। नंबर हेउची 06752222175। एहा सहित आउ किछि जरूरी सहायता नंबर गुड़ी को मने रखंतु। पुलिस आउ अग्निशम सेवा पई 112, एम्बुलेंस सेवा पई 108, स्वास्थ्य सहायता पई 104, शिशु सहायता पई 1098, महिला सहायता पई 181, ट्रैफिक सहायता पई 1099। एही समस्त नंबर मन रखंतु, सुस्थ रहंतु, सचेतन रहंतु एवं रथ यात्रा को श्रृंखला सहित पालन करंतु। जय जगन्नाथ।
1: अयं साक्षात् परम ब्रह्म दारु रूपी जगत गुरु प्रादुरासित सुराराध्यो लोकानुग्रहणाय वै। महाप्रभु कर ए जो विग्रह, ये विग्रह रे आमे कौन देखिबा? न दारु प्रतिमा चेयं साक्षात ब्रह्म प्रकाशते। ये दारु ब्रह्म प्रतिमा नुहंती, ये होचंती ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म प्रकाशते। तेणु ब्रह्म सम प्राण सखा नाही आउ। तेणु ब्रह्म भली प्राण सखा प्रकृतरे नाही, कारण ब्रह्म ही आमको बंचेची, ब्रह्म ही आमको मारिबो। तेणु आमर सी होचंती जीवन, जीवनांतक। आमे जदि आमर सी होचंती जीवन, आउ सी मध्य आमर जीवनर अंतक, सी मध्य आमर जीवन नाशकारी। सी जते दिन पर्यंत आम हृदय रे जीवात्मा रूप रे अवस्थान करुचंती, सेते दिन पर्यंत आमे समस्ते जीवंत। जो दिन यही जीवात्मा रूपरे विराजमान करुथिबा आम शरीर रु महाप्रभु बाहरी जिबे, सेदिन आमको केही आउ जीवंत कहिबे नै। आम नाम हेजिबो मृत, आम नाम हेजिबो सर्जब, आम नाम हेजिबो मुर्दार। तेणु आमर नाम के दौची, आमे जीवंत, आमे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। यार ये ये नामकरण कहा जोगु? ब्रह्मको जोगु। तेणु सेथिपै कुआ जाय ब्रह्म सम प्राण सखा नाही आउ। तेणु ब्रह्म भळी प्राण सखा प्रकृतरे ए संसारे केही नाही, कारण से अछंती आम शरीररे सेही परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशरे जोन तिष्ठति जीवात्मा रूपरे अछंती। तो आमे जीवंत, आमे शिव, आमे हौचु सबु कल्याणर मूल सबु। किंतु जो दिन से ये पिंड छाड़े, ये पिंड रे बसिथिबा जीवात्मा रूपरे से छाड़ी चिपे जीवा को छाड़ी जिबे चली जिबे, सेतो बेले आमर नाम परिवर्तन हो जिबो। आमको केही कहिबे नै शिव बोली, सरु शिवरु हर्षे काटा उड़ी जिबो, रहिबो सब मुर्दार प्रेत। केते कथा कहिबे, कौन होची प्रेतकृत्य होची, ये प्रेतात्मा हो जाइची प्रेत बाबारे। तेणु महाप्रभु होचंती आमर जीवन, सी होचंती आमर जीवनांतक। तेणु तांको सहित आमर घनिष्ठ संपर्क रहिची, तेणु तांकरी पाखरे ही विश्वास रखिबा उचित। हे प्रभु आपण मोर सर्वस्व, आमे कोठी थिलु आपण खोजी लड़िकी आणिकी आम पई गोटे मानव शरीर देले, तार भितर आम प्रवेश कलु, पुणी आम बढ़िलु एवं पुणी समय आसला से आपण बाहरी गले, पुणी आम कुआड़े चली गलु। अव्यक्ताधीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्त रु आसिलु अव्यक्त को जीवु, आउ वर्तमान आपण सहित यही जो शरीर टीका देते आपण से शरीर भितर जीवात्मा रूप से आपण उपवेशन करते आमको केते दया कर महाप्रभु। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि जिते बड़े आपणकर दिव्य जात्रा हो जात्रा को देखापी मुनि ऋषि मैंने वर्ष वर्ष अपेक्षा कर देवता मैंने वर्ष वर्ष अपेक्षा कर भक्त मैंने
2: डॉक्टर दास राधावल्लभ मठ उपर गुमुट भितर महाप्रभु दी आखि देखुं
1: आज्ञा
2: देखा जा नहीं
1: हाँ हाँ हाँ दिसिलानी दिसिलानी
2: पूरा बहुत सुंदर
1: सुंदर दिसिलानी। तेणु वर्तमान महाप्रभु गुमुटर शेष पहाच को आसिले।

माने श्रद्धालु भक्त माने दर्शन करने को आसी ना प्रभु को किपर भाव भक्त माने भगवान को भलरे दर्शन करेंगे प्रभु जात्रा किपर भाव श्रृंखलित भाव अनुष्ठित हो से श्रीमंदिर प्रशासक मुख्य प्रशासक एत तत्पर भाव जिलापा आम एसपी महोदय समस्ते तत्परता सहित लागी पड़ी प्रभुंकर सेवा प्रभुंकर यात्रा किपर श्रृंखलित भाव अनुष्ठित हो सहित ओडिशार बहु मान्यगण व्यक्ति मंत्री महोदय माने आमर जो आम कार्यालय सब करा सब व्यवस्था से आसिक बस प्रभुंकर यात्रा दर्शन करेंगे परम पावन पतित पावन यात्रा आ जो यात्रा विषय आपण कहते नृत्यांगन माने नृत्य करुछंती कबीरंकर कथा गोटे अच्छी संत कबीर जेतेबेले आसीथिले प्रभु दर्शन करिपारि नथिले जे जेतेबेले श्रीमंदिर थिले सी कहुथिले भितर को आसी जदि दर्शन करि न पारिब नाही नील चक्र को दर्शन करि दियो काई कहुथिले नील चक्र पर ध्वज विराजे मस्तक सोहे हीरा मंदिर आगे दासी नाचे

0: हे प्रभु जगत नाथ जगन्नाथ पथे देखा दियो नीति हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ आ विलंब कर नाही आसो आसो आमे आपणंकु देखिबा कु व्याकुल होउछु बड़दांड रे गोपी गोपांगना माने अपेक्षा करिछंती समस्त दर्शन करिबा पई चक्र बनाडी बुलाउछंती किए मध्य सुंदर भाव रे पताका कु जे बनाडी करी बुलाउछंती आ सिंहतर सिंह द्वार रो सेई पतित पावन विग्रहक पाखरे पतित पावन स्वयं निजे पर ब्रह्म जगन्नाथ रही अपेक्षा करी को भक्त को अपेक्षा करी प्रभु आउ काहेकि विलंब करुच कालिया कानो विलंब कर काहेकि
1: हाँ, ये को पसंद
2: हाँ सर आपनको चॉइस बहुत भल अच्छी डिजाइन भी नुआ
1: डिजाइन नुआ अच्छी ठीक अच्छी किंतु सुनार विशुद्धता रा प्रमाण कोठे मिलिबो
2: सचेतन ग्राहक हुवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किनिबा पूर्वरु बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु
3: वर्तमान राज्य रे ममता ओ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिलित भावरे कार्यकारी करूअछि
4: एही योजना अधीन रे कन्या संतान जन्म करूथिबा महिलांकु उत्साहित करबा पई पूर्वरु दिया जाउथिबा सहायता राशि 10000 टंका परिवर्ते 12000 टंका प्रदान करबा पई सरकार घोषणा करिसेंति एही अर्थराशि कु हिताधिकारी माने निजे ओ शिशुर स्वास्थ्य एवं पुष्टिर उन्नति निमन्ते विनियोग करिथान्ति सरकारक निष्पत्ति अनुजाई वर्धित सुविधा 1 एप्रिल 2025 रु लागू करा जायछि
3: एही योजना अधीनरे मिलुथबा सुविधा गुडी कहेउछि कन्या संतान जन्म क्षेत्ररे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 12000 टंका पाइबे
4: पुत्र संतान जन्म क्षेत्ररे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 10000 टंका पाइबे
3: विशेष भाबे अनुन्नत जनजाति समुदाय संप्रदायर महिला मानंकु तृतीय एवं परवर्ती जे कोनोसी गर्भधारण पई कन्या संतान क्षेत्ररे 12000 टंका एवं पुत्र संतान जन्म क्षेत्ररे 10000 टंका प्रदान करा जिवार व्यवस्था करा जायछि
4: एही योजना विषयरे अधिक सूचना पाइबा पई आपणक निकटस्थ अंगनवाड़ी केन्द्र रे जोगाजोग करंतु
3: अधिक सूचना जानिबा पई महिला ओ शिशु विकास विभाग रो वेबसाइट wcd.odisha.gov.in रे लॉगिन करंतु महिला ओ शिशु विकास विभाग द्वारा जनहित रे जारी
5: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्री मानक सुविधा पई ओडिसा रे विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचल रो घोषणा करा जायछि एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानक यात्री मानक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनक सेवारे
6: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपनक जणाउछि असुमारी शुभेच्छा एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानक हात तयारी हस्ततंत्र हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्री प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री अपूर्व संभार पवित्र घोष यात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय

0: स्वतंत्र रिहाती आसंतु आपणंक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बाजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।
1: जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। सुंदर भाव रे आपण माने सुणुथिले सही महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ जे कि परम ब्रह्म दारु ब्रह्म स्वरूप रे श्रीमंदिर रे विराजमान करी दर्शन दउछंती, किंतु आज ये स्वयं आसुचंती अटकी गले घंटाए पखापाखि से बैश पहाच रे, कारण से तो हटिया ठाकुर नट नागर केतेबेले क्या कौन कौ प्रकार देखिबे, क्या खीरीपुरी रे भसई देबे, क्या कौठी गढ़ई देबे, क्या दुख देबे तांकु ही जना, कारण से पूरा भावग्राही भक्तर भाव डोरी रे बंदा, काले किए केतेबेले हाथ टेकिक डाकि दबो हे कालिया हे कला शांत हे कालिया ठाकुर रही जा तू जा नहीं प्रभु रहीगले सेठी। ये हूँ भावर ठाकुर श्री जगन्नाथ महाप्रभु पूरा परम ब्रह्म बलदेव महाप्रभु थे माया ब्रह्म भूशक्ति बलदेव एवं सुशक्ति हूँ जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जे कि जगतर नाथ सर्वलोकंकर नाथ से पुणी पतित पावन से हूँ जो विचारधारा रही मनीष भितर ताकू उद्रेक करने काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य जो षड रिपु रही जो कुप्रवृत्ति रही दूर करने मनीष भितर आध्यात्मिक चेतनार उत्तरण पाई महाप्रभु आसुचंद बड़दाण्ड को, कारण प्रत्येक मनीषर चेतना को परिवर्तन करवा हूँ कलियुगर बड़ ठाकुर जगन्नाथ एवं बड़बाड़ गोसाई बलभद्र जगज्जननी कृपामयी माँ सुभद्रा ठाकुराणी एवं जगन्नाथंकर जो आयुध पुरुष चक्रराज सुदर्शन जे कि कली जुगरे धर्मर दंड धारण करिसंदि, आज्ञा जीए भूल करिव सीए दंड पाइब, ठीक बाट को आस नचेत ए संसार रु विदाय नब। ये रोकठक भाव रे महाप्रभु ये ज्ञान आम को देइचंती, कारण महाप्रभुंकर विचार होउची मानव चीत बुका विचार मनीष भली आचरण उच्चारण मनीष भली खाती पियती शुंती एवं मनीष भली गाधाती ज्वर से पड़ती पंदर दिन धरिकी चिकित्सित हमें ये हूँ मनीषर गुण भगवान ये देवता नुहति मनीष भाव आसी लीला पुरुष महाप्रभु जगन्नाथ आज स्वयं दारु विग्रह रूपे पतित मानू तारिबापाई जो पतित कथा आम आलोचना करुले पतित मानू तारिबापाई पतित कहले जो माने मंदिर भितर को जाई पारुनांदी से माने पतित नुहंती, पतितर अर्थ होची मुक्तिकामी पापी पतित जाति वर्ण धर्म संप्रदाय निर्विशेष जो माने बड़दाण्ड को आसुचंती जो माने टीवी परदारे किंबा आकाशवाणी कटक केन्द्र मध्यम शुणुंती देखुंती समस्ते हूँ पतित, कारण जीए मर्त्य जन्म हम सी हूँ पतित ये जाति ना जहाँ पाखे जाति बड़ नुहे से हूँ जगतरनाथ जगन्नाथ से जगन्नाथ एभली एक भावर देवता अनुभवर देवता विश्वासर देवता ज्ञानर देवता केवल अनुभव ही जाने ये सेवक दीर्घ अर्ध शताब्दी धरी महाप्रभु जगन्नाथंकर महिमा महाप्रभु जगन्नाथंकर कृपा आशीषकु जेभली अनुभव करिछि ताकू समस्ते सही भली बुझिबा दरकार ताकू सही भली अनुभव करिबा दरकार सही पे जो आमे कहूचे स्नान ए गुंडी चाबेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रासाद बाहर एकमात्र महाप्रभु जगन्नाथ आसुचंदी स्वयं लीला करिबा पई स्वयं साक्षात करिबा पई कौ मान को साक्षात करिबे ना श्रद्धालु भक्त मान को साक्षात करिबे, कारण से भक्त प्रिय माधव से कथा कुआ ठाकुर प्रत्येक मनीषर भक्तर अंतरात्मा को चिन्ही पारंती, तेणु लीला पुरुष महाप्रभु जगन्नाथ आज स्वयं दारु विग्रह पतित दारु विग्रह स्वरूप पतित मान को तारिबा पई श्रीक्षेत्रर पावन पीठ रे आज बड़दाण्ड को धीरे धीरे आसुचंदी, कारण महाप्रभु होती वास्तव में पतित पावन एवं कपिल संहित जहाँ लेखा रही साक्षात वैकुंठ स्वरूप तत्क्षेत्रं श्री पुरुषोत्तम वास्तव में।

0: सुसज्जित होइछन्ती सारथी अपेक्षा करिछन्ती अपेक्षा करिछन्ती तीन कोटि रथ जहाँकि सड़क बाबरे बड़दाण्डर से सिंह द्वार दंडायमान होइछन्ती आउ अनेक श्रद्धालु सहित आमर विभिन्न मंत्री महोदय ओडिशा ओडिशा बाहर एवं अनेक उच्च पदाधिकारी अफिसर माने आसीछन्ती आमे देखुछु कि सुंदर दिव्य भाव वर्षा तो टिके टिके चली सत वर्षार से प्रकोप कमी जाइछि किंतु एबे मध्य बहु प्रतीक्षार सहित अपेक्षा करिछन्ती श्रद्धालु आउ चारमाल पाखरे जो दयणामाली सेवक विभिन्न माळी सेवक बोली जहाँ को मध्य कुहा जाइथाय तुलसीर माळ अत्यंत सुंदर भाव चांगड़ा धरिछन्ती भक्त माने भगवान को लागी करिवे कारण तुलसी प्रिय ठाकुर वर्तमान से तुलसी प्रिय नट नागर फटफटिया जहाँ नाट एते भाव जे किए बुझिब कालियारे किए बुझिब तो माँ माया तोरी माया को बुझि तो न पारिला जशोद माँ ये जशोदा माँ मध्य तोर माया को बुझि पारि नथिला सारा विश्व ब्रह्मांड को तुम्हें परा तुम मुखर दर्शन देल आज ठीक से हीपरी भाव आम देखुचु अरुण स्तंभ निकट में कला मुख कला सिंह जी ठाकुर ये अनेछंती प्रभुंर से दर्शन करने जगतर ठाकुर को आउ प्रभुंर मध्य से लीला सामिल है अनुभव करो निकट में नरेश आज अच्छा मुझे अनुभव कथा कहूँ जेहेतु से श्रीक्षेत्र व्यक्ति मु अनुभव कर आज कौन अनुभव कर बर्तमान आम जाऊ हरिहर कानून महोदय निकट को द्वितीय पृथ निकट अच्छा आम अनुभव करने को चाहू जानवा को चाहूँ भावना किपर आज भावमय मुहूर्त
1: जय जगन्नाथ जगन्नाथ महाप्रभु प्रति जी अहंकार रखिब से निश्चय दंड पाइब जी महाप्रभु को ठीक भावरे भावभक्ति समर्पित होकरी सेवा न करिब से मध्य दुख पाइब कारण से रास्ता कड़र साधारण मनुष्य को बेसी भल पाती जो मान पाखे अर्थ अच्छी क्षमता अच्छी प्रतिपत्ति अच्छी से भली लोक को से भल पाती ना
2: जय जगन्नाथ पवित्र रथयात्रा अवसर में समस्त श्रद्धालु और भक्तवृंद को हार्दिक शुभेच्छा आपणक सुरक्षा और सुस्थता आमर प्रतिबद्धता खोला बासी और माछी बसुवा खाद्य खातु ना तटका खाद्य खातु विशुद्ध पानी जल व्यवहार करूँ दीर्घ समय धरिकी खरारे रुहंतु ना धला टोपी हाल्का पोशाक किंवा ओदा कपड़ा व्यवहार करूँ यथेष्ट परिमाण रे पानी किंवा ओआरएस पानी पियंतु छेप खंकार अलिया आवर्जना को एणे तेणे न पकाई डस्टबिन रे पकांतु पाइखाना व्यवहार करूँ शौच पर साबुन रे हाथ धुअंतु राति रे रहणी करूथिले मशारी किंवा मशा निवारक व्यवहार करूँ निशा सेवन ठू दूरे रुहंतु मुंड बुलेवा किंवा असुस्थ अनुभव कले विलंब नक निकटस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी किंवा स्वास्थ्य शिविर परामर्श नियंतु वयस्क व्यक्ति शिशु गर्भवती महिला और भिन्नक्षम जत्न नियंतु सुस्थ रुहंतु सुरक्षित रुहंतु
3: राष्ट्रीय प्रगतिर भीति नारी को शक्ति विकसित भारत में समृद्ध ओडिशा महिला सशक्तिकरण को केन्द्र और राज्य सरकार विशेष गुरुत्व महिला सशक्तिकरण जुगांतकारी योजना सुभद्रे महिला मिली आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एकीकृत ममता और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजन योग्य हिताधिकारी सहायता असुविधा थिबा महिला तुरंत सहायता पाई महिला हेल्पलाइन नंबर 181 असहाय महिला शक्ति सदन वन स्टॉप सेंटर पोषण अभियान मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि माध्यम रे गर्भवती किशोरी प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य को दिया जाउची प्राधान्य प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा आमे पढ़ा आम भाषा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अद्युका इत्यादि जरिया महिला और शिशु सर्वांगीन उन्नति पाई सर्वदा कार्यरत महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ महाप्रभु ऋषि नहांती महाप्रभु कहाँ पर रागी नहांती आमर कहाँ पाखरे किसी दोष बा त्रुटि रही अहंकार रही दूर करंतु लंब होकर महाप्रभु पाखरे दंड प्रणाम करी भूल मागंतु समर्पित प्राण रे महाप्रभु को कहंतु हे महाप्रभु हे मणिमा

0: हे जगतर नाथ हे दारु ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म हे कला शांत आपण आमको कृपा करंतु क्षमा करंतु खाली कहिले हबो नाही निजर आचरण उच्चारण भितर परिवर्तन हवा दरकार विचारधारा परिवर्तन हवा दरकार अहंकार शून्य नहले महाप्रभु घुंचिबे नाही एवं जो माने रथयात्रा दायित्व रे अछंदी सेमानंकु ए सेवकर जोडास्तरे विनम्र निवेदन आपण जाई महाप्रभु पाखे साष्टांग प्रणिपात करंतु भूल मागंतु एवं जहाँ किसी घटना घटी ताकू दूर करने चेष्टा करंतु वर्तमान मु एक प्रथम केन्द्र को मु नहीं जाऊँगी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
1: श्रोता बंधु आपण बर्त आम जो तथ्य दौचु से तथ्यटी आमर प्रत्यक्ष ज्ञान उपर आधारित से ज्ञान प्रत्यक्ष कथा हूँ प्रत्यक्ष बरणी ना ये केवल आपन को इतनी आम सूचना दे पारू जे महाप्रभु सिंहद्वार गुमुट भितर बहुत समय धरी अपेक्षा कर रहा पर वर्तमान अरुण स्तंभ पाखे आमको दृश्यमान होती दुखर कथा तार कारण कौन भी हो पाए आम तो कहीपरुनि आम गोटे केन्द्र में बसीचु धारा बरणी प्रदान करुचु आम पाखे कौन से अधिक सूचना पाइबार सुविधा भी आम पाखे ना किंतु महाप्रभुंकर मस्तक आज टाहिया ना जो टाहीटा न रहिले महाप्रभु सहजरे आसती ना बा महाप्रभु को टाहीटा महाप्रभुंकर गोटे अविच्छेद्य अंग शरीर तेणु महाप्रभु मस्तक जो टाहिया ना कहीं टाहिया ना तार कारण आम आपको कही पारना वर्तमान आम कहीपरुना कहार दोष वहार व्यक्तिगत अहंकार व औदत्य जो ये घटना घटला आम केमी जानलु आम केवल अनुमान कर एवं अतीतर एभली किसी दुर्घटना घटी यार दृष्टांत आम केवल आपको दे पारू यहीटा केवल अनुमान यह सत्य उपर आधारित नुहे जांच करने जानापी आम पाखे कौन से साधन बर्तमान ना तेणु आम क्या आरोप करूना आम क्या आक्षेप करूना ये धारा बरणी मध्यम कारण धारा बरणी भाष्यकार भाव में आकाशवाणी कौन से अधिकार ना कौन से निर्णय नापी जे एपाई ये दायी से सी दायी ये दंड पाइबा उचित ये सब कथा आमर कहार उचित भी नुहे कारण आमर से अधिकार ना किंतु आम केवल एतिकारू जो महाप्रभु ये करती कारण साधारणतः आम धारणा एवं साधारणतः आम विश्वास जो महाप्रभु अहंकार सहती ना किंतु कौन से अन्य कारण ये कथा घटी थी पारे महाप्रभु बिना टाहीयारे गुमुट भितर बड़दाण्ड को आसवा यटा मध्य आम द्वारा ग्रहणीय हो पारना आम बहुत दुखर सहित आम ग्रहण करुचु किंतु कौन है कौन है गुमुट भितर महाप्रभु कहीं समय रही यहाँ परवर्त समय हिं आम आपन को कही पारूँ बाध्यम जापर तेब एक कथा जे महाप्रभु आसवर आज टे विलंब कले आरुण स्तंभ पाखे महाप्रभु अटकी रही सूचना आम आपको दौचु आवर्त समय महाप्रभु रथारूढ़ हे और महाप्रभु को सेवक मैंने वर्तमान पहंडी करने प्रयास कर एवं महाप्रभु आसीजे भाया लगुच आमको जेहेतु महाप्रभु को चलमान हबार आम लक्ष्य करुचु तेरे सब तर इच्छा आम जितेबले कौन सी असुविधा अघटन या को देखू से आमर नियंत्रण बाहर को जोबले कथा चली जाए आम से गोटे मात्र कथा कहूँ जे महाप्रभुंर इच्छा तर जहाँ इच्छा हम से अनुसार हम से किए कौन कला नकला से आम बर्तमान तार विचार करने तार निर्णय करवा यहाँ आम पक्षर संगत नुहे तेज जहाँ हूँ महाप्रभुंर ये जो लीला ये जो लीला ये मध्य गोटे लीला आपत जानती अतीतर अनेक दुर्घटना घटी ताकू महाप्रभुंर सेवक मैने महाप्रभु चारमाल उपरकू न उठवा महाप्रभु चाड़मार उपर ओला बेलू गड़ी पड़वा ये सब कथा जो होकर इच्छा वाकर लीला भाव में कहुई तेणु एवं कहीं महाप्रभु अटकी इच्छा भाव में ग्रहण कर परवर्त समय आम देखा महाप्रभु कौन करेणु ये हूँ कथा द्वितीय कथा है जे आज कड़न भितर आम देखु मु गत काली जो श्रीमंदिर प्रशासन आ जिला प्रशासन तरफ गोटे रूपरेख प्रकाश पाए गोटे पुस्तिका से पुस्तिका मुझे पढ़ुली मुझे देख ली से बहुत स्थान लिखाई ए वर्ष कठोर अनुशासन प्रयोग अनधिकृत लोक रे कड़न भितर कितु एवं आम कड़न को देखु कड़न तो भर्ती ही जाणु कड़न जो भर्ती ही जाए प्रशासन जो पदक्षेप से पदक्षेपटा किभली भाव में कार्यकारी होती देख

0: देवी सुभद्रांक रथरे माँ मध्य सुरंधा सरलेणी आउ वर्तमान केवल अपेक्षा श्री जगन्नाथ महाप्रभु नंदी घोष रथ को उठिबे एवं नंदी घोष रथर चारमाळ पार्श्वर्ती से होउचंती एवं तांकर तो आज सबुठारु मन दुख होउची आपण मानकर मन दुख आम मानकर मन दुख कारण भगवान एभली श्रीमस्तक चाहिया न थाई से केवे बाहर को बाहरती ना जेतेबेले महाप्रभुंकर विजय हम सेतेबेले टाहिया निश्चय लागिव तार कारण होची ये आजीर परंपरा नुहे रघु अरक्षितंकु देइतिबा प्रतिश्रुति आज प्रतिफलित होची तेणु एभली भावरे महाप्रभु आसुंती केते टीवी चैनल रे तांकर ये रूप को कोटि कोटि जनता दर्शन करुछंती या मु भावुची जदि एमती किछि हेतिव निश्चित निश्चित भाव अक्षमणीय अपराध कारण ये अपराध साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु सहित ही तेणु ये देखुची प्रति वर्ष कौन ना कौन गोटे गोटे अघटन घटवाक जाऊँगी आम तो भावुलु ए जातीय अघटन केबे घटव ना कारण ये तो गोटे टाहीयार कथा टाहीयाटा केमी भांगी जीव कहीं कौन भांगी जीव
1: दास या बेसी चर्चा करवा ना आम महाप्रभु महिमा महाप्रभु
0: तेणु महिमा महिमा कहले न नचास्य कश्चित पतिरस्ति लोके न चे सीता नई बच तस्य लिंगम सकारण कारणाधिपाधिपो नतस्य कश्चित जनिता नचाधिप ए महाप्रभु को ऊपर आउ किए अच्छी लेखाई शास्त्र रे नचास्य कश्चित पतिरस्ति लोके ये ले जगतपति ये जगतपति को उपरे आउ जने पति किए अच्छी ये कथा केही विश्वास करिबा उचित नुहे कारण ये होती जगतपति नचस्य कश्चित पतिरस्ति लोके।
2: ये मुतिटी भलो लगुची पत्नी को पसंद आसीबो।
3: हां सर आपनको चॉइस बहुत भलो अछि आ ए डिजाइन भी नुवा
2: डिजाइन नुवा अछि ठीक अछि किंतु सुनार विशुद्धतार प्रमाण कोठि मिलिबो
3: सचेतना ग्राहक हुवंतु आज ही डाउनलोड करंतु बीआईएस केयर ऐप सुना किनिबा पूर्वरो बीआईएस केयर ऐप रु एचयूआईडी कोड निश्चय जांच करंतु।
4: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्था आरई जथा बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पेमेंट सिस्टम अंशग्रहणकारी पार्टिसिपेंट्स क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनी विरुद्ध रे आपणंकर अभियोग रे समाधान पई प्रथमे संपृक्त नियंत्रित संस्था निकट रे आपणंकर अभियोग दाखल करंतु एवं रेफरेंस नंबर प्राप्त करंतु।
5: यदि 30 दिन मध्यरे संपृक्त नियंत्रित संस्था कोनोसे समाधान न करंती किंबा आपण प्रदत्त समाधान रे संतुष्ट नहुंती तेबे आपण https://cms.rbi.org.in रे लॉगिन करी रिजर्व बैंक ओम्बुड्समन को निकटरे किंबा crpc@rbi.org.in रे ईमेल करी अथवा सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा सेक्टर 17 चंडीगढ़ 16017 ठिकाना रे डाक द्वारा पठाई अभियोग दाखल करि परिबे।
4: मने रखंतु सीधा सडक भारतीय रिजर्व बैंक रो ओम्बुड्समन को निकटरे दाखल होइतिबा अभियोग प्रत्यक्षन हेबार संभावना अछि
5: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित रे जारी।
6: पवित्र रथयात्रारे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। एई वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जाइछि। एथि सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जाइछि। पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे।
7: आमे वर्तमान देखि पारुचु अति सुंदर भावरे महाप्रभुंकर से अनन्य लीला वर्तमान पहंडी होई आसुछंती जगन्नाथ महाप्रभु कालिया ठाकुर आउ कोडन भितरे जो कुहा जाइथिला जे लोक माने रहिबे नाही केवल श्रृंखलित भावरे हबो किंतु आमे देखुचु भाव विहळित होई अनेक श्रद्धालु एवं एवं अनेक व्यक्ति से कड़म भितरे आसी समस्ते पहुँची जाइछंती सेहि पाई बोधुए जगन्नाथ महाप्रभुंकर पहंडीरे विलम्ब देखा जाइछि तथापि चारमाळ आळकु प्रभु अग्रसर होउछंती घंटुआंकर घंट नाद अधिकरु अधिक तीव्रतर हेबाकु लागिछि आउ आलट चालीछि चामर चालीछि

0: बोली कहा जाई पारे मीमांसक मानकर मध्य से जो करते इति न्यायिका बोली कहाई चांको कर्ता बोली मध्य कहाई पारे तनु जिए जो दर्शन दृष्टि रु महाप्रभु को भाबीबा को चाहिबो महाप्रभु सेई रूप रे तांको दर्शन देई चंती तार बहु प्रमाण आमे श्री क्षेत्र रे देखुचु एवं बुद्धंकर त्रिरत्न जैन मानकर मध्य सेई त्रिरत्न एवं ए सब कथा उडा को बुद्ध धर्म संघ ए सब कथा महाप्रभुंकर विग्रह रे समाहित होईचि एवं आपण जानिचंती जे महाप्रभु ए क्षेत्र को जो माने आसीचंती से माने तांकर समालोचक आलोचक मानको मध्य महाप्रभु आपणार करिचंती एवं आपणार करिकरी कोण करिचंती महाप्रभु केबे छोट होई नाहंती आपण देखिबे पुरी श्री क्षेत्र रे एते मठ एते मंदिर एते विचार एते दर्शन एते भावना कौनसी भावना को मध्य महाप्रभु मना करि नाहंती सब श्री क्षेत्र रे स्थान पाइचंती सब श्री क्षेत्र रे स्थान पाइबा द्वारा महाप्रभुंकर महिमा आहुरी बहुगुणित होईचि महाप्रभु छोट हो जाए नाहंती अन्य को देवता होइतिले हे तो निज क्षेत्र रे निज स्थान रे अन्य मानको से अस्वीकार करिथांदे अन्य मानको स्थान देइ नथांदे किंतु महाप्रभु उदार हृदय रे समस्तंको ए क्षेत्र रे स्थान देइचंती तेणु आज श्रीक्षेत्र महिमा काईक एत विस्तारित होती श्रीक्षेत्र महिमा काईक एत विपुल होती तार कारण हूँ यही गोटे क्षेत्र जन देवता जी कि सबु धर्म सबु संप्रदाय सबु वर्ण सबु धर्म ये समस्त को एकाकार करिचंती समस्त को ग्रहण करिचंती ये गोटे सर्वजनग्राह्य क्षेत्र सर्वधर्मग्राह्य क्षेत्र सर्वसंप्रदाय ग्राह्य क्षेत्र सर्वदर्शन ग्राह्य क्षेत्र तेणु सबु दर्शन सबु विचार जितेबाला श्रीक्षेत्र समाहित होती श्रीक्षेत्र एत महिमा श्रीक्षेत्र आदर तेणु महाप्रभु आज समस्त सत्व को समस्त सत्ता को समस्त विचार को एकीभूत कर मड़दाण्ड में वर्तमान उभा होती
1: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि एथि सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे
2: ओडिशार प्रगति पथरे जोडी हेउछि विकासर नुवा अध्याय दूरता कमाई गांकु गां सह जोडुछि सेतु बंधन छात्र छात्री प्रतिबंधक साजुनी बढ़ला नई जातायत तो हो सुगम सुगम ग्राम्य सड़क दुआरे पहुंचुची आंबुलांस गाँ को बजार सह जोड़ुची प्रशस्त सड़क चाषी फसल ठारु कुंभारा माटी हांडी सबुपाई खोलुची नुआ सुजोग पर्यटन स्थली को सुगम करुची सड़क संजोग बढ़ुची पर्यटकों आगमन गाँ गाँ में लंबी उन्नत सड़क दृढ़ हेउची विकास भित्तिभूमि समृद्ध हेउची ग्रामीण ओडिशा सड़क सेतु ओ भित्तिभूमि विकास माध्यमरे पूरण हेउछि यशस्वी प्रधानमंत्रीक पूर्वोदय संकल्प माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीक मार्गदर्शन रे ओडिसा रो विकास पई प्रतिबद्ध ग्राम्य उन्नयन विभाग
3: पवित्र रथयात्रार हार्दिक शुभेच्छा ओडिसा रो समृद्धि एवं आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य साधन पई नालको सदा सर्वदा संकल्पबद्ध भारतर प्रमुख तथा निर्भर योग्य एल्युमिनियम निर्माता नालको
4: पुरीर बड़दाण्ड केवल गोटे रास्ता नुहे
5: एहा भक्त ओ भगवान को जोड़ीबार पथ
4: एही पथरे जाति नाही धर्म नाही परिचय नाही
5: अछि केवल मनीष पणिया
4: आउ जेते बेले कहा पाई साहाज्यर हात बढ़े
5: ताहा ही हुए महाप्रभुंक प्रति श्रेष्ठ समर्पण
4: सड़क दुर्घटनाग्रस्त जीवन रक्षार संकल्प सह सरकार आनी पीएम राहत योजना
5: जेउठी अनुबंधित घर डाक्तरखाने रे सात दिन जाए डेढ़ लक्ष टंका पर्यंत चिकित्सा खर्च सरकार बहन करंती
4: ओडिसार 798 घर डाक्तरखाना एही योजना रे पंजीकृत होईछंती
5: सेही भली समस्त सरकारी डाक्तरखाने रे सड़क दुर्घटनाग्रस्त चिकित्सा संपूर्ण मागणा
4: आसंतु मानवीयतार एही संकल्प रे सहभागी होई आमे भी बढ़ाइबा सड़क दुर्घटनाग्रस्त को सहायता राहत
5: पवित्र घोष यात्रा रो हार्दिक शुभेच्छा
4: राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिशा द्वारा जनहित रे जारी
6: पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बाजार आपनकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बाजार रे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्रु प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्रीर अपूर्व संभार पवित्र घोष यात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बाजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती आसंतु आपनक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बाजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर
0: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ସପ୍ତଦଶ

सुतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम चरणारविंदम। महाप्रभु बड़ ठाकुर जगन्नाथंकर ये दिव्य लीलारे श्रोता बंधु रथारूढ़ होउछंती गर्भगृह को प्रवेश करुछंती महाप्रभु जगन्नाथ। आपण माने जानंती जेपरी श्रीमंदिर सेहीपरी रथ मध्य जेपरी श्रीमंदिर चारोटी द्वार आउ स्तंभ अछंती तार पाचेरी अछि सेहीपरी छोटो आकार श्रीमंदिर होउछंती ए रथ। तेणु से रथर द्वार देई गर्भगृह को बा जो आसन रे महाप्रभु जो पिंडी उपरे बसिबे सेई गर्भ ऋषि पटा तारी उपर को झुली झुली कालिया ठाकुर आज टिके अभिमान करिछंती महाप्रभुंकर पहंडी गतिरु आमे निश्चित भावरे अनुभव करिबा। पतितानां पतितोहम काहिकिना प्रार्थना द्वारा सबु किछि संभव। एठी भक्त प्रार्थना करुछि पतितानम पतितोहम त्वमेव पापहारक। हे महाप्रभु जेते पाप हरण होइ पारिबो सेथि पाई एकमात्र तुमे ही पापहारक। पावन पुरुष देही निश्चला भक्ति मे प्रविभो। हे विभु हे प्रभु जगन्नाथ तुमे क्षमा करि दियो। आश्चर्य लागिबो आपण मानंकु श्रीमंदिरर मेघनाद पाछरी कडरे हजार हजार श्रद्धालु माने दर्शन करुछंती अलौकिक लीला को आउ मुंड माळ बड़दाण्ड परिपूर्ण कहिबाकु गले गुंडीचा मंदिर पर्यंत पछकु पछ लागि रहिछंती। आपण माने तो अनुभवी आजिर सकाळ समयरु मेघ मात्र दुई घंटा मझिरे विश्राम नैथिला तापरे अविरत वर्तमान मध्य मेघ पूर्व परि चालिछि। एणु आकाश मध्य अंधकार परिवेश रही किंतु महाप्रभुंकर ये दिव्य लीला को वायु वरुण शशांक ये समस्ते अग्निदेव समस्ते स्वागत करुछंती आउ सानिध्य लाभ करुछंती। तेणु से जो पाट रजुरे पहंडी करा जाउथिला बाहुट कंट जहाँ बौल काठरे तियारी महाप्रभुंकर सेनापटा लागि समयरे श्रीअंगरे दिया जाइथाए काहिंकिना श्रीअंग जेतेबेले पहंडी होई होई आसिबे पावच्छ डेईबे तले बाजिबे सेई श्रीअंग को क्षति न पहुँचिबा पाई बाहुट कंट सेनापटा लागि होइथिले महाप्रभु। जणे हनुमान बेसरे तांकर गदा को बुलाई घंटुआ मानंकर पाखरे से मध्य ताल प्रदान करुछंती। टिकिए हेले केही काहाकु छाड़ू नाहंती सेवा करिवारे उणा रहू नाही। तेबे मनीष जीवन रे निश्चित भूल ना भूल रो व्यवस्था कोठी ना कोठी रही थाए ते भूल हेबाटा बड़ कथा नुहे। भूल को सुधारिबा पाई महाप्रभुंक पाखरे आमे समर्पित हेबा ये हेउछि आमर परम कर्तव्य। शास्त्र परा कहिछंती विद्या ददाति विनयम विनयात जाति पात्रत्वम पात्रत्वात् धनम आप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। तेणु सुख पाइबाकु हेले विनयर आवश्यकता अछि। जो सामग्रिक ये जो उत्सव घोष यात्रा एथिरे अनेक प्रकार जेमिति आपण जानिछंती 119 प्रकार सेवा ये सेवा भितरे बांधी होई गोटे कार्य को निर्विघ्न रे करिबा दुरुह व्यापार आमे कहिबू एठी केवल महाप्रभुंकर करुणा ही सबु कार्य को संपन्न करि देउछि। एते प्रकार मन आम परिवार रे आपण माने अनुभव करंतु पांच जन तीन जन दस जन परिवार भितरे केते समस्या आसुची। ये जदि रुसिलाणी सीए मन उणा कलाणी सीए मध्य कहुची मते अनदेखा करा जाउची विभिन्न प्रकार समस्या भितरे परिवार पूर्णी आगो को चालुची। आउ ये जो महाप्रभुंकर परिवार ये जो बड़ ठाकुरंकर ये जो बड़ व्यवस्था ये श्रीमंदिरर व्यवस्था सर्वम रहस्य पुरुषोत्तमस्य सेइति पाई कुआ जाए देवान देवो न जानाति कुतः मनुष्य

0: ईएनके वर्तमान ओडिसार प्रत्येक जिल्लारे समुदाय 35 डाकघर रप्तानी केन्द्र उपलब्ध अछि।
1: कस्टम डॉक्यूमेंटेशन करिबा, आमदानी रप्तानी कोड आईएससी जेनरेट करिबा एवं रप्तानी डाक बिल पूरण करिबा, स्थानीय उत्पादक क्षुद्र एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई को सहायता, डेडिकेटेड काउंटर्स एवं प्रोसेसिंग एरिया, ए सबको ठीक भाबरे नियंत्रण करिबा पई डाकघर रप्तानी केन्द्र को आसंतो।
0: समस्त डाकघर रप्तानी केन्द्र रे पार्सल पैकिंग यूनिट गुड़ी करो प्रोविजन अछि, जेउथरे पैकेज फैसिलिटी मध्ये उपलब्ध।
1: खाली सेति कि नहि, एक्जिटिंग बल्क कस्टमर्स का पाई प्रोविजन अनुजाई टिकस फैसिलिटी प्रदान करा जाउछि।
0: डाको घरर रप्तानी केन्द्र डीएनके एबे आपनक सेवारे।
2: वर्तमान राज्य रे ममता ओ प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना मिलित भावरे कार्यकारी करूअछि।
3: एही योजना अधीन रे कन्या संतान जन्म करूथिबा महिलांकु उत्साहित करिबा पई पूर्वरु दिया जाउथिबा सहायता राशि 10,000 टंका परिवर्ते 12,000 टंका प्रदान करिबा पई सरकार घोषणा करिछंती। एही अर्थराशिकु हिताधिकारी माने निजे ओ शिशुर स्वास्थ्य एवं पुष्टिर उन्नति निमन्ते विनियोग करिथांती। सरकारक निष्पत्ति अनुजाई वर्धित सुविधा 1 एप्रिल 2025 रु लागू करा जायछि।
2: एही योजना अधीन रे मिलुथबा सुविधा गुडी कहेउछि, कन्या संतान जन्म क्षेत्र रे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 12,000 टंका पाइबे।
3: पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 10,000 टंका पाइबे।
2: विशेष भाबे अनुन्नत जनजाति समुदाय संप्रदायर महिला मानंकु तृतीय एवं परवर्ती जे कोनोसी गर्भधारण पई कन्या संतान क्षेत्र रे 12,000 टंका एवं पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे 10,000 टंका प्रदान करा जिवार व्यवस्था करा जायछि।
3: एही योजना विषय रे अधिक सूचना पाइबा पई आपनको निकटस्थ अंगनवाड़ी केन्द्र रे जोगाजोग करंतु।
2: अधिक सूचना जानिबा पई महिला ओ शिशु विकास विभागर वेबसाइट wcd.odisha.gov.in रे लॉगिन करंतु। महिला ओ शिशु विकास विभाग द्वारा जनहित रे जारी।
4: पवित्र रथयात्रा रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि। एथि सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र, यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंक यात्री मानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे।
5: जलदाने घन बाध्य सुख तेजी राजा तोषिवे परजा तेबे तो परमाराध्य। श्रोता बंधु, वर्तमान भगवती माँ सुभद्रांक रथरे गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव छेरा पहरा करुछंती। आगरे चालिछंती राजगुरु जी मंत्रपाठ करुछंती। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणी सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवह। एवं जो घटुआरी आगेरे अच्छा जे चंदन सेवा करती, चंदन घोरी मंदिर प्रति चंदन लागी को से चंदन जोगांती, से रूपा पिंगण रु चंदन छेरा को छिंसी देउचंती रथर चारिपटे। स्वर्ण मार्जनी को धरी से शुक्ल पुष्प एवं छेरा को पहरी देउछंती आदर सहित गजपति दिव्य सिंह महाराज। आपण माने अनेक कथा सुनुथिले ए आद्य सेवकंकर विषय रे। वास्तव रे आमे माने आम परंपरा को नहीं एते महनीय जीवन जापन करुछे, तनो परंपरा वर्तमान से जो छेरा पहरार जो स्वर्ण मार्जनी अनेक सेवायत माने से परिवेश रे मुंडरे लगे दौंती, कहीं केते अहोभाग्य से झाड़ूटीर जो थी परम ब्रह्मंकर से पवित्र दिव्य रथर स्पर्श बा छेरा पहरा करागला। त्रिखंडिका काहाली विषय आपण माने सुनुथिले, आमर जे करुथिले वरिष्ठ घोषक डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय। तेणु ये सबू हेउछि आमर परंपरा, कौनसी समय रे एथिरे भूल होइ पारिबो नाही। आज गोटे विचित्र कथा देखिबा को मिलिछि, प्रायतः व्यक्तिगत अनुभव रु मु कहिबि 32 वर्ष धरी ए रथयात्रा को देखि आसुथिले मध्य। आज जो प्रकार रे सकाळ समय रु मात्र 2 घंटार पाग सुखिला थिला, किंतु संपूर्ण भावरे वर्षा सिक्त सेवा आज महाप्रभुंकर कौन रही लीला से प्रतिटि सेवायत

सानिध्य टिके मिलिबो कहीं मात्र आउ किछि समय परे तालध्वज रथरे कला घोड़ा जोचा हो गले वर्तमान सेठारे मातली जी अच्छा सारथी सी प्रस्तुत हो रही किपरि बड़ ठाकुर रथ को आग को निर्देश देवे बाही नेवाई डाहूक चढ़ीगले दौड़ी बंधा हेले समस्त प्रस्तुति सरीगला आपण मैंने अनुभव करुवे भक्तंर बड़ दाण कि अवस्था होपर से रथ को टी टाणीबू से रथ हूँ जीवन रथ से रथ हूँ प्रगतिर रथ से रथर रही जीवन समस्त समस्या समाधान सूत्र रही तेणु रथ टी स्पर्श कर रथ टी टाणीदे आम जीवन जो लाभ से लाभ गुड़ाक आमको मिलजि ये गोटे अवकाश ये गोटे आशा भक्त मनरे रही तेणु वर्तमान अनुभव करूँ आपण मैने किपरि परिवेश बेल कु बेल परिवर्तन होउछि सबु समयटी होउछि घोष यात्रार महत्वपूर्ण समय गोटिक परे गोटिए नीतिकांति विशेष कर श्रीगुंडिचा यात्रा को एथि विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कहा जाउछि वर्तमान गजपति महाराजा पयरमाला ग्रहण करुछन्ति श्रीअंग लागि माँ भगवती सुभद्रांकर श्रीअंग लागि माला को पूजा पंडा दान करुछन्ति अंटी तांको हाथ को सी मुंडरे लगाई राजगुरु को देउछन्ति ए आशीर्वादर माला आम श्री नहर को नहीं करी जीवा तीन रथर तीनोटी माला से संग्रह करिले जहाँ को पयरमाला बा आशीर्वाद माला बोली कुहा जाए तेणु वर्तमान वीर काहाली बाजुची क्षमा प्रार्थना करी जगतर कल्याण पाई जगन्नाथ महाप्रभुंकर आशीर्वाद ये प्रभु आशीर्वाद पृथ्वी उपरे किपरि रहिबो ये श्रीक्षेत्र किपरि सेमती अक्षुण्ण अभिन्न एवं धर्मर क्षेत्र होई जुगे जुगे रहिबो यही प्रार्थना को करुछंती चारमाळार उपरे ठिया होई गजपति दिव्य सिंहदेव ऊर्ध्व बाहु होई हाथर जोड़ी समस्त नर नारायण मानंकु बरदाण्डरे से कोटि प्रणाम जनाउछंती सांगरे समस्त सेवायत माने अछंती हरि बोल ध्वनि पकाई से महात्मा भगवती सुभद्रांक रथरु वर्तमान चारमाला आड़कु आसुछंती वर्तमान तळकु आसुछंती पुणी पाछोटी आणिबे जेऊ व्यवस्था भितरे जाइथिले श्रीनहररु सेई प्रकाररे से रौप्य तामजानरे बसी धोला छता कला छता दुईटी छता देखंतु गजपति सम्मान रे जेपरि अक्षुण्ण रहिबो से कथा को गुरुत्व दिया जाउची तेलिंगी बाजा बाजुची भजंतरी वीर काहाली बाजुची सांगरे अछंती देउल परीक्षा देउल करण लेंका करण छामु खुंटिया परीक्षा एवं राजगुरु ये समस्त पारिषद वर्ग सेवायत मानंकु धरी वर्तमान कांधुआणी होई एक तामजान रे आसुछंती श्रीनहर आड़कु ए अवकाश रे पुलकित होउछंती नर नारायण माने बड़ दाण्ड रे थिया होइथिबा श्रद्धालु माने निजकु धन्य मने करुछंती अरे केते पाखरे आमे रथ को देखिलु केते पाखरे गजपति महाराज को देखुचु ये जो परिवेश यार विकल्प नाही एहाकु विश्व दरबार रे समस्ते भावंती कौन ए ठाकुर कि लीला करुछंती आपण माने चिंता करंतु श्री क्षेत्र ये क्षेत्र नाम होची श्री प्रथम रहिला श्री शब्द रे मां महालक्ष्मी कृपा को ये क्षेत्र धारण करिछि बा नामित होईछि ये क्षेत्र श्रीद श्री सह श्रीनिवास श्री निधि श्री विभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमांग लोकत्रयाश्रय यही श्री क्षेत्र श्री शब्द को नहीं एते रुद्धिमंत एते विश्व दरबार परिचित आज आमे माने जो स्थान को गले मुझे भारतर बाहर को यूरोप महादेश से जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रभुंकर पाख बा क्षेत्र जड़े मनीष बोली एत आदर पाइक आसी ये हूँ महाप्रभुंकर आम मानर कृपा करुणा से सबु करवा से महाप्रभु को सका उठिले नाम ने राति शोवाक गले नाम देवा वर्तमान देखु फेरी आसुंच गजपति महाराज ससम माने पाछोटी आणुंतर जो रही पारिषद वर्ग कथा को वर्तमान एवं आसतु शुणा बड़दाण्डर कि श्रद्धालु।

0: श्रद्धालु मानकर भक्तिपूत अभिव्यक्ति आम केन्द्र तरफ रु संग्रह करा जाइछि। तेणु आपण मानंकु आमे सही कार्यक्रम रे सम्मिलित कराउछु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ,
1: जय जगन्नाथ। ना है शारदा विश्वास, मुँ भुवनेश्वर आसी। आज सब बड़ कथा ठाकुर एमती मो घर भाग्य जे आज दिन में मोर ये नातुणी जन्मदिन मोर भी जन्मदिन तापर ठाकुर तो अनुभव बहुत किसी मो जीवन बहुत किसी बहुत किसी भगवान सब मोर करते चाहे भी ठाकुर को मुझे सब बड़े पाई दर्शन सब बड़े मो पचर से ठाकुर छुआ डाई मो पर प्रति आशीर्वाद भी बहुत बढ़िया रखिंट आउ अनुभव ठाकुर कहिले तांकर महिमा बहुत किछि अछि।
2: आज आपनको इठी केमती लागुछि जो बडदांड रे आपन जो प्रभुंकर घोष यात्रा चर्मचक्षु रे देखुछन्ति आपनको केमती अनुभव?
1: माने बहुत बढ़िया है जे एते वर्षा रे भी सब भक्त माने आछन्ति सतरे जगन्नाथंकर एतिकि महिमा एमिति अछि जोडा कि समस्त आसी पारछन्ति एतिकि भी कालियांको डाकुछि प्रभु समस्ते आसी समस्ते परिवार को पिला छुआ को समस्त भल रे भी पहुँचन्तु आ समस्ते भी जेमिति दर्शन पाइबे निश्चित पाइबे।
3: मो ना है डॉक्टर विश्वजित महापात्र। आज्ञा ये सारा विश्वर अगणित जगन्नाथ प्रेमी श्रीक्षेत्र प्रेमी सारा भारत बर्ष जिते अच्छा सनातनी जो मान आराध्य देवता श्री जगन्नाथ आज तर नवदिन व्यापी जो घोष यात्रा रो प्रथम दिन किदिन आगर स्नान यात्रा जाइला नवजौवन दर्शन जा गोटे दिन तले सबुदिन ठाकुर आमर भितर था श्रीमंदिर भितर था आज तर इच्छा जो कि भक्त जो कि मानने दर्शन करने को मंदिर भितर को जापार ना गहन से जीवे आम जगन्नाथ कौ जगतर जी नाथ से केवल पुरी को सीमित नुह ओडा को सीमित नुह भारत को सीमित नुह सारा विश्वर सी नाथ तेणु श्री जगन्नाथ आम कौ तेणु समस्त जनकल्याण पर आज जो बाहरी ठाकुर जे सारा विश्वर शांति प्रतिष्ठा हो जो विभिन्न जगार युद्ध विभीषिका देखा जाइए लोक मान भर बहुत प्रकार असामंजस्यता देखा जाइए लोक मान बहुत विभीषिका देखा जाइए से सबूर समाधान हो पृथ्वी पक्ष जनसमाज एमती आहरी भल उन्नत स्रोतर आगे जाऊ।
4: अभिषेक दास कटकुर आत्येक वर्ष मुझी आसे महाप्रभु दर्शन करने को सौभाग्यर कथा आज मोर जन्मदिन मु महाप्रभु पाखे सब प्रार्थना करे प्रभु कोटि जन्मर पुण्यवल श्रीगुंडीचार जन्म मिले आप मत आज जन्म देखते मुझे ऋण ये जन्म सुझीपरि कि सेमती हसी खुशी की संसार मुझे विदाय दी देखो संपूर्ण भाव मुझे निजक समर्पित करदे महाप्रभु पाखे आज सब गोटे विचित्र जिनस घटला बैश पहाचे महाप्रभु दुई घंटा धरी अटकी रे आसिले हुकिले जापारूनी कौन महाप्रभु बराद थी तापर आउ गोटे दुर्भाग्यजनक कथा घटला आज ताइयाटा महाप्रभु खसीगला जोटा कि महाप्रभु जाथे कौन तार उद्देश्य थी आम तो कही पार्वानी कि नवेदन महाप्रभु पाद तले मोर शरणापन जे महाप्रभु आपण मान भक्त जो भाई भाव में आज उदारे ढाई आप दर्शन करवा सदा सर्वदा घंटा घटे रख।
5: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आमे वर्तमान आज विश्व प्रसिद्ध पवित्र रथजात्रार शेष पर्यायर उपनीत वर्तमान केवल रथ टणा पर्व प्रथमे बड़ ठाकुर बलभद्र महाप्रभुंकर तालध्वज बा हलध्वज बा लंगलध्वज रथ टणा आरंभ हब। वर्तमान तीन रथरे गजपति महाराज छेरा पहरा कम सारी राजनगर को प्रत्यावर्तन कर सारे एवं जो परवर्ती जो कार्यक्रम रथ टणा ता सुरखुरी हम श्रद्धा भक्त मान भितर जो आवेग जो उत्कंठा जे आम समस्ते रथ दौड़ी छुईवा रथ टाणीबारे सामिल हवा कारण महाप्रभुंकर रथ दौड़ी छुई जे रथ टाणे से सही भले भाग्यवान नहले पुरी श्रीक्षेत्र आज प्रतिकूल पाग सत्वे वर्षा सत्वे आज इंद्र देवतांकर वर्षा को खातिर न करिकिरी समस्ते आज ओदा सरसर ही महाप्रभुंकर रथ

0: ना मु आपन को कहूची जे 4टा बेले रथ टणा हवार थिला 4टा बेले रथ टणा वर्तमान 5टा हेची गुटी घंटा विलंब होईची तथापि किछ असुविधा नै किंतु दक्षिण पट्टु आमे देखुचो एमआर मठ पट्टु जेते सब श्रद्धालुंकर संख्या थिला सेमाने सब आउ कोनसी बारिकेड न मानिकरी विराट जनसमुद्र वर्तमान दक्षिण पटरु दौड़ी आसुचंती रथ टाणी ए समय लोक मान किए अटक तेणु जो समस्ते पूरी को आसी था पूरी को आसिक समवत होता समस्ते रथ को टाणी से बहुत वर्तमान समस्या सृष्टि करार आशंका देखा दूँ कारण आम जानवे पखापाखि हजार रु 2000 लोक वर्तमान पशी आसुच्च दक्षिण पटर दौड़ी दौड़ी धरवापी एवं ताको घेर कर रथ को घेर कर सब आरक्षी बाहन माने ताको सुरक्षा दौंस रथ को कितु एत संख्यक लोक जहाँ तो रथर दांड में बड़ दांड में गुंडीचा मंदिर आड़क जी लोक मैंने रही रथ दौड़ी टाणी उद्ग्रीव हो रही व्याकुल एपटे दक्षिण पटु समस्त एमार मठ पटु दक्षिण पटु बहु संख्यार श्रद्धालु माने आसिक रथ टाणी आग्रह प्रकाश कर निश्चित समस्या सृष्टि कर तेणु से समस्या को समाधान करने वर्तमान आरक्षी बाहन प्राणपणे चेष्टा करोसी विशृंखला न हो रथ जमी टाणी होगा कथा से भाई जाऊ बर्तमान मु देखुची वरिष्ठ अधिकारी माने आरक्षी बाहन से लोक नियंत्रण करने अत्यंत तत्परतार सहित कार्य करुछंती ये गोटे गोटे समस्या बेले बेले हो जाए रथ टणा भितर जिते रथ टाणी लोक मान भर जो व्याकुलता थाए से व्याकुलता को सेमाने आउ नियंत्रण न करि पारी बहुत संख्यार आसिक पहुँचुचंती रथ जो थिला से रथ जमी गड़ी जाइछि से रथ थिबा जगार रथ चक जो जगह मानक से जगह मानक वर्तमान लोक मैंने मुंडिया मारे को आरंभ कर दे कौन करवा लोकंर जो व्यक्ति लोकंर जो व्याकुलता एवं महाप्रभु मान को दिव मान लोक मैंने जो प्रकार श्रद्धा एवं अनुराग देखा चाहते रथर चकटी प्रतिष्ठा हो गला रथटी प्रतिष्ठा हो गला जो रथ चक से पवित्र होकर भूमि को स्पर्श कर भूमि को टिके आउंसी दवा से भूमि को टिके मुंडरे लगेदे से भूमि में लंब होकर पड़ जावा यही प्रकार जो व्याकुलता भाक्तिक आवेग आपको कि भाव में आम प्रशमित कर तेणु ताको वर्तमान पुणी बलभद्रंकर तालध्वज रथ वर्तमान आगक बढ़ला मु भावुची यही थर करे बहुत बाट सी आगे जीव तेणु बहु संख्यार यात्री माने एवं श्रद्धालु माने रथ को टाणी समवत कष्ट सब वर्तमान मु अनुरोध करुची आमर नरेश चंद्र दास महोदय को सी परवर्ती बरणी आपण मान को दिखा
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आम प्रतीक्षा करते महाप्रभुंर रथ टणा आरंभ हम बर्तमान आम देखिले चारिटा बेलू रथ टणा हबार बर्तमान पांचटा बाजिला तेणु पांचटार प्राय रथ टणा आरंभ हो गला एवं बलभद्र भगवान जो तालध्वज रथ ता वर्तमान निज स्थान रु अल्प टिके दस हाथ दूर को जाकरी पुणी रही जाइछंती वर्तमान आमर आरक्षी बाहन सुंदर भाव रथ को परिचालना एवं रथ परिचालना कला परे आमे देखुचु रथर पछपटे बहुत लोक रही जाइछंती एवं सेमाने मध्यन उदंड नृत्य मध्य आरंभ करदे एवं सेमानकर मनरे जो उत्कंठा थिला जे आमे टिके प्रभु पाख को जीवु तेणु से ही उत्कंठार सहित से माने वर्तमान आसिले एवं जेतो बले रथ टिके टणा आई गला दक्षिण पटु बहु लोक वर्तमान बाड़ी आसिछंती एवं सेमाने चिंता करुछंती जे आमे रथ टाणीमु किंतु एहा एक विश्रुंखलित आचरण कारण से माने जो संपूर्ण भाव पछपट को कब्जा कर सारे तेणु वर्तमान आगपट जदि फांका न हो ये जगह अत्यंत संकीर्ण हो तेणु आम देखु वर्तमान जाओ प्रभुंर दया आरक्षी बाहन संपूर्ण भाव सजग अच्छा जो लोक मैंने माड़ी आसान उठ से रथ ठारू टे

एक साथ आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली और अन्य स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण ये दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में बगैर कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ।
4: मशीन में लुगा पकेबा पूर्वरु चेक करी नथिलो कि?
3: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ। एबे निकटस्थ बैंक जाई फटा पुराना नोट बदलांतु। जदी बैंक मना करे तो आरबीआई रो ओंबड्समैन पाखरे अभिजोग करंतु। आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु, सतर्क रहंतु।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ।
4: मशीन में लुगा पकेबा पूर्वरु चेक करी नथिलो कि?
3: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ। एबे निकटस्थ बैंक जाई फटा पुराना नोट बदलांतु। जदि बैंक मना करे तो आरबीआई रो ओंबड्समैन पाखरे अभिजोग करंतु। आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु, सतर्क रहंतु।
5: आकाशवाणी पुरी आरंभ करुचु ओडिया कथा चित्र गीतर कार्यक्रम। प्रथमे शिल्पी भिकारी बड़ भक्तशाल बेगंक कथा चित्ररु शुणिबा आसंतु ए गीतटिकू।

आकाशवाणी संवाद पढ़ुंती प्रज्ञा परिमिता जेना भक्तिपूर्ण परिवेश मध्यरे श्रीक्षेत्र पुरी बड़दाण्ड रे गड़िला श्रीजीवंक तिनिरथ प्रधानमंत्री आसंताकाली हरियाणा रे प्रथम हाइड्रोजन रेल चलाचल करिबे शुभारंभ ओडिशार सातटी स्टेशन समेत देशर 75टी अमृत भारत स्टेशन करिबे उद्घाटन चलित वर्ष भारत रे रेकर्ड संख्यक 376 मिलियन टन खाद्यशस्य उत्पादन युक्रेन नूतन प्रधानमंत्री सेरी कोरेस्की मनोनीत एवं कार्डिफ्ठारे एक दिवसीय आंतर्जातीय क्रिकेट सीरीज द्वितीय मैच भारत और इंग्लैंड मध्ये जारी पुरी रे आजि आषाढ़ शुक्लपक्ष द्वितीय तिथि रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा भक्तिमय परिवेश मध्ये चली चतुर्थ मूर्ति रथारूढ़ हो श्रद्धालु दर्शन देवास आड़प मंडप को नवदिनात्मक यात्रे बाहरी अपराह प्राय पांचटू प्रथम श्री बलभद्र तालध्वज रथ अटणा आरंभ होता परे देवी सुभद्रा दर्पदलन और शेषे श्रीजगन्नाथ नंदीघोष रथ टणा हो महाप्रभु घोषयात्रा पर चलचंचल हो उठी श्रीक्षेत्र कोटी ओडिया मूड़मणि श्रीजगन्नाथ रत्नवेदी जन्मवेदी को यात्रे बाहरी घंट घंटा खोलताल हरिबोल हूलहुी और जय जगन्नाथ ध्वनि प्रकंपित हो उठी बड़दाण्ड चक्रराज श्री सुदर्शन बड़ ठाकुर श्री बलभद्र महाप्रभु श्रीजगन्नाथ और देवी सुभद्रा मानवीय लीला को समग्र ब्रह्मांड दर्शन कर अपराह्नरे रथ उपर चितालागी और बेश अनुष्ठित होगापे गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव तीन रथरे छेरापहरा नीति संपन्न करते चारमाला फिटा घोड़ा और सारथी जोचा जा

0: सुदूरु सदर अपहंच अंचलर स्वर उत्सव महोत्सव सभा समिति समारोह प्रगति दुर्गति एवं संगतिर अभिव्यक्ति को नहीं आंचलिक संवाद विभाग पक्षर प्रस्तुत करुचु जिला हालचाल आज जिला हालचाल शुणु संबलपुर जिला संपर्क तथ्य देखते आम संबलपुर संवाददाता गुणमणि विश्वाल और उपस्थापन मु जितेन्द्र कुमार नायक संबलपुर जिलापा सम्मिनी कक्ष में राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी जिलार वरिष्ठ अधिकारी नहीं समीक्षा बैठक करते संबलपुर जिलार विकास कार्यक्रम एवं राजस्व सेवे संबलपुर जिलार अग्रगति संपर्क समीक्षा कर कलम दुई सुधार में संबलपुर जिला चमत्कार काम कर राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कहते वसुंधरा योजन पटा आवंटन कार्यक्रम शेष पर्यायर अच्छी और आसंता डिसेंबर शेष सुधा संबलपुर जिले में समस्त शिक्षानुष्ठान निजस्व जमीपट्टा रहिबो बोली से कहते
1: संबलपुर जिलार विकास कार्यक्रम एवं स्वतंत्र भाव राजस्व सेवा प्रदान क्षेत्र में संबलपुर जिलार अग्रगति ये दुईटा विषय थी कलम टू करेक्शन संबलपुर जिला बहुत चमत्कार काम कर 90% पाखापाखी लोकंर जमीर कलम टू करे।

ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। यह घंटनाद या कोलाहल या जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भक्तजन? कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है।

क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है

0: यात्रा करते हैं।
1: वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्न वेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां 1 सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्ति भाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

0: एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी

0: अंजलि जी वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी स्वागत है आपका जगन्नाथ पुरी में, आपको यहां आकर कैसा लग रहा है?
1: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था, इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज़ की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
0: धन्यवाद अंजलि जी।
2: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ଏଇ ଗୀତ ସହିତ ଶେଷ କରୁଛୁ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟୁ ଅକେଲେ ହମ୍ ଅକେଲେ ତୁମ୍ ଅନ୍ଦାଜ କଥାଚିତ୍ରର କେତୋଟି ଗୀତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସେ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା କେ ସାଥ ମୈଁ ମୁନୀଷ ଶର୍ମା। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसान

0: जिलों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच

0: मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
1: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर

0: एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in men's cricket, second ODI between India and host England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग-अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडलिंग।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी। इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाली।

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन,

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थीं। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में प्रकाश झा की पॉलिटिकल थ्रिलर आई राजनीति। आई मेरे सुहा हंसती हंसाती बोलिया

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके ना चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

ये वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3 में।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहां आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आई साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौर। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आई विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: Ja.
1: ये था आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: 사랑.
1: 예때벌 세수는 들릴까? 스파니 커터크. महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे गीतिनाट्यर प्रसारण श्री गुंडीचा रचना एवं प्रयोजन शारदा प्रसाद शारदा प्रसन्न नायक संगीत भुवनेश्वर मिश्रा।

0: धर्य धर इंद्रदुम्न घेन हे सांत्वना शोक त्याग कर मनु जाऊछि मु श्रीहरिंक पासे पचारिबी तांकु एही कुटर कारण
1: जाओ हे देवर्षि तुमे न फेरिबा जाय अपेक्षा रे बसिथिबु आमे दुहे एही नीलगिरी तळे शोकातुर अश्रु नयन
0: नारायण नारायण नारायण

0: आज तो एडे चिंतित कहीं जगन्नाथ
1: भाई राणी गुंडीचा राजा इंद्रदुम्न शुद्ध आवेगमय आत्मीयता भक्ति मोर अंतरात्मा को चहल से आतुर नवेदन
0: कौन से मानकर निवेदन
1: आमे दुहे सुभद्रा को सांगरे धरी गुंडीचा राणी बेढ़ारे आम जन्मस्थान महावेदी को थे बुलवाक जा तुम्हें अनुमति दे
0: तो अति उत्तम कथा एथिरे आपत्ति करिवार मोर कौन अछि
1: कौन खाली जीवा आसीबा ना सेठी किछि दिन रहिबा
0: तू जा स्थिर करिवु
1: को दिन जीवा
0: जो दिन तू ठीक करिवु
1: क्यों थरे जीवा
0: तू जो थरे कहिबु
1: रथरे जीवा
0: जीवा
1: तुमर तालध्वज नंदीघोष देवदलन रथ कथा मन अछि भाई
0: सब मन अछि
1: सेइ थरे जीवा तुमे तालध्वज रे जीवो मु जीवि नंदीघोष रे आ सुभद्रा सुदर्शन देवदलन रथरे जीवे आउ गोटे कथा भाई पोती कथा
0: कौन
1: महावेदी आमर जन्मस्थान सेठी प्रत वर्ष थे जा बुला आसे केमी हाँ बाटे गला आईला बेले समस्त सांगे भेट हो जाता आउसी घर पोड़पिठा खाते
0: मौसी पोड़पिठा मतलब मन पड़ा हाँ तो कथा मुझे कौन केमत हो जगन्नाथ संसार मंगल भक्तर प्रार्थना पूरण करने तू जिते बड़े जहाँ चाहबु जहाँ करू सब मोर मत रही
1: धन्य है भाई तुम्हें बड़ तुमको पचार मोर कर्तव्य आज ये गरगर कहीं लक्ष्मी
2: गरगर है भी नहीं भाई भौनी तीन ही रथ से बस जन्मस्थान को जीव आई कि मुझे तुम जगुआ की

0: श्रे श्रे श्रे गजपति पुरुषोत्तम देवंकर जय हेउ।
1: महामंत्री, श्रीगुंडीचा यात्रा निकट हे आसिला। महाप्रभु जगन्नाथंकर कृपारु एथरक समस्त शुभ अनुकूल करि रथर निर्माण कार्य आरंभ करा जायछि। वैशाख मास शुक्ल तृतीया रोहिणी नक्षत्र दिन मु संकल्प करिथिलि, आ सेई अनुसारे समस्त कार्य सुचारु रूपे संपादित हेई उपयुक्त रथ काठ संग्रह करा हेइछि। मु अत्यंत प्रीत जे वर्धकी गण सुंदर भावरे बड़दाण्डरे रथ निर्माण करुछन्ति। एही मनोरम यात्रारे कांची राज जेमा पद्मावतींक सहित परिणय सूत्रे आबद्ध हेई मोर नीलाद्रि बिहारींकर सेवा करिबार वासना जागृत हेइछि।
0: गजपति अनुमति देले मो कांची राजांग निकटकु विवाह प्रस्ताव दे दूत पठेइबि।
1: पठान्तु महामंत्री, दूत शीघ्र संवाद बहन करि आणिले विवाहर आयोजन करा जिवो। जय जगन्नाथ।

मुहरे से कहिला चंडाल अपमान देई भियाईला गोल केऊ मुहरे से कहिला चंडाल अपमान देई भियाईला गोल धरी